सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 20 जुलाई 2026 सोमवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:34 पर और सूर्यास्त होगा 7:24 पर।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो दस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो दस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: जी हाँ, आज सोमवार है। आप जहाँ भी हैं, अपने रेडियो सेट के पास आएं। अपने शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सुजाता संजय, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से की गई बातचीत, विषय है गर्भावस्था में देखभाल।

0: बात करेंगे पूनम रावत 90.8 मेगाहर्ट्ज से।
1: भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से लिसनर्स तक ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि वो ये जान सके कि गर्भावस्था के दौरान यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उन्हें क्या क्या चीजों का सावधानी लेनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके चलते मिसकैरेज हो जाता है, जो कि हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायक होता है।
2: जी, तो मैम गर्भावस्था में एक महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्रेगनेंसी को हम यूजुअली 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर 4th, 5th, 6th महीना जिसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर 7th, 8th, 9th मंथ यानी जिसे हम लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइमेस्टर होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो समय होता है जब आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इसी दौरान आपको अपने खाने पीने देख रेख सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन उन महिलाओं के लिए जो पहली बार गर्भवती हो रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि काफी कुछ आपको पता होता है। अब सवाल ये होता है कि प्रेगनेंसी है तो हमारा बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी बॉडी का लुक चेंज होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत बार ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसे असामान्य चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं जिनके साथ आपको एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। जैसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की शिकायत रहने लगती है, या नोजिया यानी टकारे बहुत ज्यादा आने लगती है, गैस की शिकायत रहने लगती है, या कब्जियत रहने लगती है, या बहुत ज्यादा आलस रहता है, या नींद बहुत ज्यादा आती है। तो मैं अपने हर पेशेंट्स को भी ये सलाह देती हूँ कि देखिए, जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपके शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, और उन बदलाव को हमको बड़ा टेक्निकली हैंडल करना है, समझना है कि ये बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि बदलाव हमेशा मैं मानती हूँ कि एक पॉजिटिव साइन होता है कि मे बी आपकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक है। फिर ये इम्पोर्टेंट जानकारी होती है कि क्या नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, रुक रुक के दर्द हो रहा है, या दर्द हो रहा है और वो बैक साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो इसको अनदेखा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज तो आपको माइल्ड पेन है, हो सकता है अगर आप इसको अनदेखा कर रहे हैं तो कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको तेज होने लगे और कहीं ना कहीं वो दर्द ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका शुरुआती समय में ही प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। तो दर्द है तो दर्द को जैसे ही पता लगता है तो तुरंत आप कोशिश करें, आपके पास कोई अस्पताल है या महिला डॉक्टर है तो उन्हें जरूर दिखाएं, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है जिसकी वजह से हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस इतने ज्यादा हैं, जिस वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, और उससे कहीं बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में ये देखी जा रही है कि प्रेगनेंसी आ जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेट मिसकैरेज या गर्भपात हो जाता है। तो इस चीज को आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आपको लगता है मुझे पेन है तो इमीडिएटली हो सकता है आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है।
2: जी मैम, जैसे एक महिला गर्भवती हो गई तो उसको अपना किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि वो खुद भी स्वस्थ रहे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, या गर्भ में पलने वाला शिशु भी स्वस्थ रहे?
1: हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मुझे लगता है मेरे सभी लिसनर्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी आना एक प्रकार की नेचुरल प्रक्रिया होती है। नेचुरल है क्योंकि सृष्टि आगे इसी से बढ़ती है। तो अगर प्रेगनेंसी आ गई है तो हर महिला का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ साथ उसके सभी फैमिली मेंबर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज का ध्यान रखे कि किस प्रकार से उनको उसकी देखरेख करनी है। अगर मैं बात करती हूँ कि कुछ एडवाइजेस चलती हैं, एडवाइजेस का मतलब होता है कि आपको ये फॉलो करना है कि कोई भारी सामान नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करनी है, और तीसरा, अगर आपको लगता है आपको पेन की शिकायत रहती है या हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द होता रहता है तो आप कंप्लीट बेड रेस्ट के साथ साथ अपने पैरों के सिरे को थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर बात आती है खाने पीने की। खाने पीने में अगर हो सके फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने चल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी प्रवृत्ति गर्म है, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं तो आपको बंद करना होता है। पहले 3 महीने में ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए और 9 महीने तक आपको पपीता नहीं खाना है। कच्चा पपीता बहुत बार गर्भ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मिर्च मसाला या बाहर का खाना या फास्ट फूड इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं तो कोशिश कीजिए पहले 3 महीनों में ये नहीं लेना, और फास्ट फूड के लिए तो मेरी हमेशा ये सलाह होती है कि हो सके तो 9 महीने इस चीज को अवॉइड करें। पहली चीज तो ये हो गई आपकी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दूसरा किस प्रकार की चीजों को खाना पीना है। फिर तीसरा ये होता है कि बहुत बार प्रेगनेंसी के दौरान, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, आलस रहने लगता है, बॉडी बहुत ज्यादा थकान फील करती है, कईयों बार तो ब्रेस्ट में भी एक दर्द या दुखन या भारीपन होने लगता है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 3 महीनों में एक हार्मोन था जिसे हम एसटीजी कहते हैं वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ये बदलाव आते हैं। तो इससे संबंधित मेडिकेशन या दवाइयां आप ले सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी में पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं, जो कि महिला डॉक्टर द्वारा आपको रिकमेंड की जाती है। क्योंकि मेरा मानना, अगर आपको बहुत ज्यादा अत्यधिक उल्टियां हो रही हैं या बहुत ज्यादा आपको कब्ज की शिकायत है या गैस बहुत ज्यादा बन रही है और आप इस सबके साथ अपनी प्रेगनेंसी रखते हैं, तो आप पूरे दिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से पेट में दर्द रहने लगता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है और आप बहुत वीक फील करते हैं, आपका बीपी भी डाउन हो जाता है, शुगर भी कम हो जाता है। तो बेटर है, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो ऐसी दवाइयां जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनका आप सेवन कर सकते हैं। फिर आता है कि आपको खाने में किस तरीके से लेना चाहिए, तो उसके लिए मेरा हमेशा ये एडवाइस होता है कि पहले 3 मंथ है तो आप ये कोशिश करें कि आप अगर सॉलिड नहीं ले पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लिक्विड को ले सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा रखी जाती है। अगर आप एक पूरा ग्लास पानी पीने की कोशिश करेंगे तो आपको इमीडिएटली वॉमिटिंग हो जाती है। तो अगर आपका बीपी कम है तो आप अपने पानी में नमक चीनी का घोल बनाकर उसे एक एक सिप के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले 3 महीने में अगर पानी की कमी होती है तो वो बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। खाने में आप कोशिश वो करें जो आप खा सकते हैं, यानी कि लाइट खाना खाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। जैसे आप सैलेड ले सकते हैं, आप फ्रूट्स में सेब का सेवन कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप सिट्रस फ्रूट जैसे सेब संतरा ये सब ले सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि दाल आप ले सकते हैं तो मूंग की दाल लेनी चाहिए, जिसको आप थोड़ा सा पतला बनाकर ले सकते हैं। जब आप इस प्रकार से खान पीन रखते हैं तो काफी हद तक ये आपको न्यूट्रिशन भी देता है, दूसरा आपकी और दूसरी समस्याएं जो हो रही है प्रेगनेंसी की वजह से उनको भी कंट्रोल करके रखता है। और अब ये बात आती है कि खाने पीने का तो आप ध्यान रख ही रहे हैं, अगर आपको दर्द है हल्का सा भी तो आप तुरंत उसको डॉक्टर को दिखा सकते हैं। फिर जैसे ही आपको पता लगता है आपको प्रेगनेंसी है और आपका टेस्ट पॉजिटिव है, तो सबसे पहले बेसिक होता है कि आप डॉक्टर से मिलकर अपना, अगर आपको दर्द है तो आप पहले भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं ताकि ये पता लग जाता है आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पर है या नहीं। और अगर आपको दर्द की कोई शिकायत नहीं है तो आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड 2 महीने में करवा सकते हैं, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी और थोड़ी क्लियर होकर स्पष्ट रूप से नजर आ जाती है और आपसे संबंधित कुछ खून और पेशाब की जांचें की जाती है, जिससे हम ये जान सके कि महिला जो कि गर्भवती है उसको किसी प्रकार में उसके ब्लड में शुगर की शिकायत तो नहीं है, उसको कहीं थायराइड की दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं उसका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है। तो ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उससे संबंधित दवाइयाँ चालू कर दी जाती हैं।

0: मैम जांचों पे ही मैं जानना चाहूंगी आपसे कि एक गर्भवती महिला के लिए जांच और टीकाकरण का कितना महत्व है, क्योंकि घर गांवों में अक्सर हमारे दादी जी नानी जी लोगों को सुनते हुए देखा था कि हमने तो नहीं किया कोई जांच, हमने तो नहीं लगाए कोई टीके, हमारे बच्चे तो स्वस्थ हैं। तो इनका कितना महत्व आप मानती हैं एक गर्भावस्था में?
1: देखिए, ये जो बात आपने बोली कि दादी नानी तो कहती थी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ये काफी हद तक सही है, लेकिन मैं इसको सिंपल से शब्दों में बताना चाहूंगी। देखो, पहले क्या था, चीजें बहुत सामान्य थी, महिलाएं बहुत एक्टिव होती थी, उनके मेंसेस बहुत रेगुलर होते थे और सारी चीजें बड़ी प्राकृतिक होती थी। लेकिन तब और अब में बहुत बदलाव आ चुका है, चाहे हम शहर की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें। तो अब जो बच्चियां हैं उनको बहुत बार हार्मोन्स की गड़बड़ियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उनकी डेट्स में बहुत इरेगुलरिटी होती है। जब वो शादी करती है तो उनको प्रेग्नेंट होने में भी तकलीफ आती है, और बहुत बार तो ये देखा गया है कि वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन के चलते बच्चेदानी भी कमजोर हो जाती है, तो गर्भ लेने में भी दिक्कत आती है और गर्भ यानी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में भी दिक्कत आती है। तो मेरा पहला यही सुझाव होता है कि घर के बड़े लोगों को भी ये समझना होगा कि समय जब बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती हैं, नई नई दिक्कतें चालू होती हैं, तो उनको भी ये समझाना है कि नहीं, अगर आपको दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, इससे पहले कि उसके साथ कुछ बुरा या मिस हैपनिंग ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आपने बोला कि जांचों और टीके का क्या महत्व है, देखिए जांचों का ये महत्व होता है, मैं अपने लिसनर्स को जरूर ये जानकारी देना चाहूंगी कि कभी कभी प्रेगनेंसी गर्भ यूट्रस में ना आकर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में नहीं है, बच्चेदानी के अलावा किसी दूसरी जगह पर आ गई है, तो ऐसी प्रेगनेंसी बहुत बार मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो इन परिस्थितियों में काफी हद तक हमारी गलती ये होती है कि हम चूंकि अल्ट्रासाउंड बहुत देरी से करा रहे हैं और उस गर्भवती महिला को ऑलरेडी पेन की शिकायत है, तो पता चलता प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं थी, उसकी नलियों में थी, ट्यूब में थी या अंडेदानी में थी या दूसरे हिस्सों में थी, जिसकी वजह से वो उसकी अंडेदानी फट गई और वो महिला के लिए जानलेवा हो गया। इसीलिए एक बेसिक अल्ट्रासाउंड एज अर्ली एज जितनी जल्दी हो सके हर महिला का जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जानकारी नहीं है तो लोग नहीं कराते। हमारी खुद की ओपीडी में हम लोग ये देखते हैं, अस्पताल में बहुत बार ऐसी महिलाएं आती हैं जिनकी नलियां फट चुकी होती हैं, अत्यधिक ब्लीडिंग के चलते उनको बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है और जान बचाना मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड तब किया जाता है जब उनके 2 महीने पूरे हो जाते हैं, अगर प्रेगनेंसी ठीक ठाक है तो, ताकि ये जान सके क्या जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में जो गर्भ ठहरा है उसमें धड़कन ठीक से आ गई है कि नहीं। क्योंकि अक्सर यहाँ पर भी लोग गलती कर देते हैं, लोग जाके 3रे महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं जब बहुत बार बच्चों में धड़कन नहीं आ पाती है और प्रेगनेंसी को हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। तो इस परिस्थिति में जब 3 महीने का गर्भ किसी कारणवश खराब हो जाता है, गर्भपात की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है, तो ये महिला के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक और डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड इस तरीके से कराए जाते हैं, पहला प्रेगनेंसी पता चलते ही, दूसरा 2 महीने पर, फिर होता है आजकल चूंकि हम सभी जानते हैं समय बहुत बदल चुका है, बहुत बार जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम देखते हैं बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोष आते हैं, यानी कि उनमें जन्मजात विकृति या खराबी पैदा हो जाती है। तो चूंकि साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम ये नहीं इंतजार कर सकते ना कि जो बच्चा पैदा हो वो किसी प्रकार से खराबी वाला हो, तो इसके लिए सलाह दी जाती है कि आप 3 महीने यानी कि 12 वीक्स के आसपास एक एंटी स्कैन किया जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि जो गर्भ में पल रहा है शिशु उसकी नाक की हड्डी यानी नेजल बोन प्रॉपर बनी है या नहीं। फिर एक अल्ट्रासाउंड का सारा लिया जाता है तकरीबन 4.5 महीने पर, जिसे हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिससे हमें ये एक विस्तृत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है कि गर्भ में पल रहे शिशु का हर अंग ठीक से बन गया है कि नहीं, यानी उसके हाथ पैर ठीक से डेवलप हो गए हैं, उसकी किडनी प्रॉपर डेवलप हो गई है, उसके स्टमक प्रॉपर डेवलप हो गया है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार यही वो समय होता है जब लोग ये अल्ट्रासाउंड कराने में चूक कर देते हैं, तो बहुत बार गर्भ में पल रहे शिशु में खराबी होती है जिसकी जानकारी नहीं होती है, और जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो पता चलता है अरे इनमें तो जन्मजात दोष है, जिसके लिए पूरी फैमिली परेशान होती है, दुखी होती है, तो बेटर है ये जानकारी पहले ही पता कर ली जाए। अब तीसरी बात आती है कि इस दौरान अगर कोई दिक्कत होती है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, नहीं तो रूटीन चेकअप के लिए पेशेंट को बुला के उनको हर महीने एंटीनेटल चेकअप करने के लिए बोला जाता है। फिर ये बात आती है कि इस दौरान अगर आपको कोई शिकायत नहीं है तो आप अपने 9 महीने पूरे कर कर महीने के आखिरी में एक लास्ट अल्ट्रासाउंड कराकर अपना गर्भ देख सकते हैं, मेरा प्रेगनेंसी ठीक है कि नहीं, पोजीशन ठीक है कि नहीं, बच्चा पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं, उसका वजन प्रॉपर है कि नहीं, उसकी ग्रोथ बराबर हो रही है कि नहीं। ये तो आपके अल्ट्रासाउंड का क्रम आता है। फिर आते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में कुछ एंटीनेटल टेस्ट होते हैं जिन्हें हम प्रेगनेंसी से संबंधित टेस्ट कहते हैं, जिनमें आपका हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड ग्रुप होता है, शुगर होता है, कुछ वायरल मार्कर होते हैं और थायराइड होता है, जिसको आप शुरुआती समय पे करवा लेते हैं। अगर उसमें कोई कमी या दिक्कत निकलती है तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं। अदरवाइज आपका जब रूटीन चेकअप होता है तो आपके लुक से ही डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर उनको कोई संदेह होता है तो बीच में सहारा लेते ब्लड टेस्ट का, नहीं तो 7 मंथ के बाद एक बार रिपीट किया जाता है और कोई दिक्कत होती है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। फिर आती है तीसरी बात जो मैंने बोला कि अगर इसमें ऐसा लगता है कि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो गई है या बीपी हो गई है, तो फिर उनके टेस्टों का क्रम बदल जाता है, तो उसी हिसाब से कराए जाते हैं। इंजेक्शन जो होते हैं वो टिटनेस के इंजेक्शन होते हैं, जो कि हर गर्भवती महिला के लिए लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसे हम 4थे महीने में पहला इंजेक्शन और उसके तकरीबन 1.5 महीने बाद उसका दूसरा डोज लेते हैं। तो इसके केवल 2 ही डोज होते हैं। अगर कोई महिला जिसका बच्चा पहले से है और ये उसकी दूसरी प्रेगनेंसी और बच्चा 3 साल से छोटा है, तो उसे केवल एक बूस्टर डोज ही लगवाना इनफ होता है। तो सबका अपना अपना महत्व होता है, जिससे गर्भ और गर्भ में पल रहे शिशु प्रॉपर उनका चेकअप होता रहे, जिससे माँ और बच्चे जो कि पैदा होने वाला है उन्हें किसी भी प्रकार के अपनी जान का खतरा ना रहे।

0: तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं घर गांवों में प्रेगनेंसी के दौरान ANM सेंटर से महिलाओं को आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड की गोलियां मिलती हैं, और कुछ महिलाएं तो इनका नियमित सेवन करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं गोलियां मिलते ही फेंक देती हैं। तो इनकी क्या उपयोगिता है प्रेगनेंसी के समय पे?
1: फॉलिक एसिड का सेवन करना हर गर्भवती महिला के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि फॉलिक एसिड में एक ऐसा तत्व होता है जो गर्भ में पल रहे शिशु को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि दिमागी दोषों से बचाता है। तो ये मेरी सलाह होगी कि हर महिला को फॉलिक एसिड का सेवन तो शुरुआती समय से करना चाहिए, फिर समय के हिसाब से आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन वो भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें किसी भी प्रकार से कमी आती है, अगर माँ के शरीर में कमी आ गई तो माँ के शरीर की कमी का सामना बच्चे को करना पड़ सकता है, जिससे आगे चलकर बच्चे में भी किसी भी प्रकार की कमी या दोष आ सकता है। और डिलीवरी के दौरान माँ के लिए भी जानलेवा हो सकता है, मान के चलिए उनका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम है और वो आयरन भी फेंक रही हैं, तो अपने आप हीमोग्लोबिन और कम हो जाएगा, तो आगे जाके डिलीवरी के वक्त ब्लीडिंग ज्यादा होगी जो कि जानलेवा हो सकती है। तो हर गर्भवती महिला को ये समझना चाहिए कि वो जिन दवाइयों का सेवन कर रही है वो अपने साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी कर रही है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी होना और डिलीवरी होना, हमेशा ये कहा जाता है किसी भी औरत के लिए ये दूसरा जन्म होता है, तो ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है उस वक्त बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, और अगर आप पहले से ही एनिमिक है यानी आप खून की कमी का सामना पहले से ही कर रहे हैं, तो ब्लड लॉस की वजह से आपकी जान जा सकती है। तो इन दवाइयों का सेवन करना अति आवश्यक है, और इंडिया में एनीमिया यानी कि खून की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो बेटर है कि दवाइयों का सेवन करें। हाँ, बहुत बार होता है इंडाइजेशन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप बेटर है कि आप अपने डॉक्टर को बताएं कि मुझे ये सूट नहीं कर रही है, तो उस हिसाब से उसको चेंज कर दिया जाता है या दूसरा सब्स्टिट्यूट दे दिया जाता है जिससे वो सेफली उसको ले सकते हैं। अगर कोई महिला बहुत ज्यादा खाना खा रही है तो जरूरी है ये चेक करना कि कहीं उनका शुगर तो नहीं है, वो डायबिटिक तो नहीं है। बहुत बार डायबिटीज हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस वजह से भी वो ज्यादा खाना खा सकते हैं, या थायराइड की बीमारी हो जाती है, तो इसलिए ब्लड टेस्ट करना जरूरी होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर खाना कम खाते हैं तो उसकी वजह से बहुत बार ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि खाना खाने में प्रॉब्लम है, दिक्कत ये है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप पौष्टिक चीजें खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और प्रोटीन प्रॉपर डाइट में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, और खाना जरूरी होता है। तो इसको मेजर करने के लिए यूजुअली हम लोग वेट चेक करते हैं कि आइडियली आपका वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 8 to 10 kg अगर बढ़ रहा है तो वो एक्यूरेट है।
0: जी मैम। और मैम, अब चुनौतियों पे अगर हम बात करें तो एक गर्भवती महिला को किन किन चुनौतियों का सामना अपने गर्भावस्था में करना पड़ता है?
1: देखिए, चुनौती हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी होना और प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस होना और डिलीवरी के वक्त ब्लड लॉस होना और उस दौरान आपकी बहुत बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर एक्सेसिव नौजिया होता है जिसकी वजह से कुछ खा पी नहीं पाते हैं, या वॉमिटिंग शिकायत बहुत ज्यादा रहती है जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है बीपी आपका बहुत डाउन रहने लगता है, आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये सारे चेंजेस काफी हद तक परेशान करते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन सब सिचुएशंस को देखिए हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, इसके लिए फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक ऐसा लाइफ माहौल बना के रखें जिसके वजह से प्रेग्नेंट पेशेंट को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे के लिए खतरनाक होता है। तो डेफिनेटली चेंजेस है, चैलेंजेस भी है, तो उनको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता है। आप अपनी फैमिली और डॉक्टर की एडवाइस से उसको सेफली प्रेगनेंसी ले सकते हैं, कर सकते हैं 9 महीने तक, और सेफ डिलीवरी करवा सकते हैं।
0: और मैम, अब अंत में आप क्या संदेश से लिसनर्स को देना चाहेंगी?
1: देखिए, मेरा हमेशा ये रहता है, अगर हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, देखिए प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज होती है कि जिस दौरान बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं को हैंडल कर पाना एक प्रेग्नेंट महिला के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा, मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अनदेखा ना करें। अगर आपको लगता है कि बार बार गर्भपात होने का डर है या प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियां बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए अगर आपको कोई मेडिकल मैनेजमेंट कराना पड़ता है तो जरूर कराइए। ऐसा बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां होती हैं कि कुछ दवाइयां खाने से बच्चों को कुछ हो जाता है। देखिए, आपको जो भी दवाई रिकमेंड की जाती है वो अपने आप में पूरी तरीके से सेफ होती है, और उसके साथ साथ आप एडवाइजेस फॉलो करें और चेकअप कराना भी उतना ही जरूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि जो गर्भ में पल रहा है शिशु वो पूरी तरीके से सुरक्षित है कि नहीं है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अमूल्य जानकारी साझा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू वेरी मच।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में की गई बातचीत डॉक्टर सुजाता संजय से।
3: बातचीत की पूनम रावत ने, विषय था गर्भावस्था में देखभाल। रिकॉर्डिंग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ मंदाकिनी की आवाज में की गई थी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
2: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता पर हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसको लिखा है सरस्वती कौल बट जी ने, जो पंचकुला में रहती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने वतन से बेघर हुए अब लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 3 दशक से ऊपर। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग और बुजुर्गवार या तो हैं या फिर त्राही त्राही करते सिधार गए। कैसे दुखद त्रासद स्थिति है कि नई पीढ़ी के किशोर युवाओं को यह नहीं मालूम कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मातृभूमि कौन सी है। बाप दादाओं से उन्हें जरूर सुना होगा कि मूलतः वे कश्मीरी पंडित हैं, मगर 1990 में वे बेघर हुए थे। एक चीज तो सत्य है, कश्मीर से हम सबको निकाला गया है, पर हमारे भीतर कश्मीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी संदर्भ में हमारी बहन सरस्वती कौल बट जी ने यह कविता लिखी है। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कब तक। चंद सांसें लेना कठिन है, चंद सांसें लेना कठिन है, इंसानियत भी शर्मसार है। वीरान चमन और शुष्क है भावना, मौन खड़े हैं पर्वत, नदियां शिथिल हैं। देख रहा है चुपचाप विस्तृत आकाश, थम सी गई है वितस्ता। शंकर आचार्य और कलहन की धरा आज रक्त रंजित है। सब और नरबक्षी मंडरा रहे हैं, हर कोना है बहुत ही डरावना। न जाने कब किसकी बारी है, जिंदगी यहां मौत से हारी है। मौत का तांडव जिद पर अड़ा है, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है। चीतड़ों में लिपटी लाशें चीख रही है, किसी की मां किसी का भाई, किसी का बाप पति किसी का, मौत की भेंट चढ़ा है। कश्यप तेरी धरती पर इतना चीतकार, भगवान तुमने ही तो ये सृष्टि बनाई, हे ईश्वर तू कर कोई उपकार, रोक दे ये घातक नरसंहार, रोक दे ये घातक नरसंहार। ये कविता लिखी है बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने, और ये कविता खुद ही उस दर्द को बयां करती है जो हम जागते सोते अपने आसपास ही महसूस करते हैं। ये 33 वर्ष भी अब 33 दिन से ज्यादा नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कल ही हमने अपने घर को छोड़ा है। प्रभु करे किसी का घर ना छूटे। आखिर घर तो घर है। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नफरत

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं एक और नई लघु कथा। शीर्षक आप बताइए, ढकोसला कहें या नाटकीय प्यार, ये इच्छा आपकी है। और इस नाटकीय प्यार या ढकोसले की रचना की है अरविंद वर्मा ने। सुनाता हूं अरविंद वर्मा की लिखी हुई ये रचना नाटकीय प्यार। मैंने सुना है एक रात ऐसा हुआ कि एक पति घर वापस लौटा अपने काम से, थका मांदा यात्रा से आया था, प्यासा था, थका हुआ था, आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि पानी ले आ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वो इतना थका था ना कि लेटते ही उसको नींद लग गई। पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही बिस्तर के पास, क्योंकि उठाए तो ठीक नहीं है नींद टूटेगी, खुद सो जाए तो भी ठीक नहीं है, जाने कब नींद टूटे और पानी की जरूरत पड़ जाए पीने के लिए। उसका पति प्यासा सो गया है ना, इसलिए वो रात भर गिलास लिए खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली, उसने कहा अरे पागल तू सो गई होती। उसने कहा ये संभव नहीं था, तुम्हें प्यास थी, तुम कभी भी उठ सकती थी, तो तू मुझे उठा लेती। उसने कहा वो ही मुझसे ना हो सकता, क्योंकि तुम थके हुए थे और तुम्हें नींद भी आ गई थी, तो ये उचित था कि तुम सोए रहो, मैं गिलास लिए खड़ी रहूं, जब नींद खुलेगी तो पानी दे दूंगी और पी लोगी, नहीं खुलेगी तो कोई हर्जा नहीं, एक रात जागने से कुछ बिगड़ थोड़ा ही जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई, जो वहां का सम्राट था ना उस तक भी खबर पहुंच गई। उसने उसकी पत्नी को बुलवाया और कहा कि प्रेम की ऐसी धारा मेरी राजधानी में बहती है और मुझे पता ही नहीं, मुझे प्रेम की इस धारा का सम्मान करना होगा। मैं अभी जिंदा हूं, मेरा फर्ज बनता है कि यदि मेरी प्रजा हमारी संस्कृति में प्राण जीवित रख रही है ना, तो मुझे उसको सम्मानित करना होगा। और सम्राट ने बहुत से हीरे जवाहरातों से उसका स्वागत किया, उसको बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात देकर भेज दिया। अब क्या होता है साहब के पड़ोस की एक महिला इसी बात से बहुत ईर्ष्या करने लगी, जलन हो रही थी उसको, ये कोई खास बात थोड़ी है, एक रात गिलास हाथ में लिए खड़ी रही, उसके लिए सम्राट ने उसको लाखों रुपए के हीरे जवाहरात और पैसे दे दिए, ये भी कोई बात है। उसने अपने पति से कहा कि देखो जी आज तुम थके होकर ना घर लौटना, आते ही बिस्तर पर बैठ जाना और पानी मांगना, मैं पानी लेकर आऊंगी, लेकिन तुम आंखें बंद करके सो जाना और मैं खड़ी रहूंगी रात भर, और सुबह जब तुम्हारी आंख खुले ना तुम ऐसे ऐसे ही वचन कहना जैसे उसके घर वाले ने कहे थे कि तू रात भर क्यों खड़ी रही, तू उठा लेती मेरे को। मैं कहूंगी कैसे उठा सकती थी, तुम तो थके मांदे थे, तो तुम कहना तू सो जाती, तो मैं कहूंगी कैसे सो जाती, तुम्हें प्यास लगी थी और इतनी जोर से ये बात कहना कि पड़ोस के लोगों को भी पता लग जाए, और क्योंकि ये तो हद हो गई जरा रात भर, और किसको पता कि खड़ी भी थी भी को नहीं खड़ी थी, क्योंकि रात ही सोली हो इसकी झपकी ले ली तूने, फिर सुबह उठकर खड़ी हो गई हो। ये बात फैला दी सारे गांव के बीच में, लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन हमें भी तो सम्राट से पुरस्कार लेना है। अब पति थका मांदा वापस लौटा, लौटना पड़ा भाई, जब पति कहे कि थके मांदे हो तो लौटो, लौटना पड़ा, आते ही बिस्तर पर बैठा, कहा प्यास लगी है, पत्नी पानी लेकर आई, पति आंख बंद करके लेट गया, कोई नींद तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी है, जो पत्नी कहती है तो मानना पड़ेगा, और फिर लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात का भी तो सवाल है। अब पत्नी ने सोचा कि बाकी का दृश्य तो सुबह ही होने वाला है, अब रात तो बेकार खड़े रहने से कोई फायदा है नहीं, किसको पता चलता है ये खड़े भी रहे या नहीं खड़े रहे, वो भी सो गई
विलास विलास एक तरफ रखकर। सुबह उठकर उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि पड़ोसियों को पता लग जाए, और पड़ोसियों ने सुना भी। पड़ोसियों ने क्या, पूरे गली मोहल्ले ने सुना, और ये बात सम्राट के कान तक भी पहुंच गई, और सम्राट के द्वार से उसको भी बुलावा आया, बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन जब दरबार में पहुंची ना तो बड़ी हैरान हुई। सम्राट ने कहा, ये जो दो कोड़े लेकर आदमी खड़े, इनको ले आओ, इस औरत के ऊपर बरसाओ कोड़े। जब कोड़े बरसने लगे वो चिल्लाई, ये क्या न्याय है, एक को हीरे जवाहरात और मुझे कोड़े, अरे किया तो मैंने भी वही है जो उसने किया था। सम्राट ने कहा, किया है तूने लेकिन हुआ नहीं है, और होने का मूल्य है, करने का मूल्य नहीं है। जीवन में हर रोज होता है, अगर हृदय में स्पंदन ना हो रहा हो ना, तुम कर सकते हो लेकिन उसे करने से फायदा क्या है, लाभ क्या है। सारे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे कर रहे हैं, धर्म क्रियाकांड है, हो नहीं रहा है, गीता पढ़ी जा रही है, की जा रही है, लेकिन हो नहीं रही है। तुमने सुन लिया कि गीता को पढ़ने वाले पाप से मुक्त हो गए, मोक्ष को उपलब्ध हो गए, तुमने सोचा हम भी हो जाएं, तुमने भी पढ़ ली, लेकिन तुम्हारा पढ़ना उस दूसरी पत्नी जैसा है, तुम परमात्मा को धोखा नहीं दे पाओगे। साधारण सम्राट को धोखा नहीं दे पाए तो वो जब समझ गया कि ऐसी घटनाएं रोज नहीं घटती हैं, और पड़ोस में घट गई, वही घटी, बिल्कुल वैसी ही घटी, ये तो कोई नाटक हो, ये प्यार नहीं है, ये नाटकीय प्यार है, दिखावा है। हर वक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग से की है, किसी और के ढंग से नहीं। हर प्रेमी ने प्रेम अपने ढंग से किया है। कोई मजनू और शीरी और फरियाद उनकी किताब रखकर और पन्ने पढ़कर और कंठस्थ करके कभी प्रेम होता है क्या? ये जीवन कोई नाटक नहीं है। पीछे बैठा कोई आदमी कुछ कहता जाए और आप उसको बोलते जाओ, ये जीवन है, ये जीवन है। अरे भाई ऐसा करोगे ना तो खराब कर लोगे अपने जीवन को। तुम हजार बार गीता पढ़ लो, जैसे अर्जुन ने पूछा था ना, अगर वैसी जिज्ञासा नहीं होगी ना, वैसे दिल से आवाज नहीं आएगी ना, तो जो कृष्ण को सरल हुआ कहना, जो अर्जुन को संभव हुआ समझना, वो तुम्हारे साथ नहीं घट सकता, दोहराया नहीं जा सकता, कुछ भी जगत में दोहराया नहीं जा सकता। प्रत्येक घटना अपने आप में अनूठी है। कितना ही सिर पटक लो और कहो कि मैंने भी तो वैसे ही किया, मैंने भी तो ठीक वैसे ही पालन किया था नियम का, फिर अन्याय क्यों हो रहा है? अक्षरक्ष पालन का सवाल ही नहीं है। अपने ईश्वर को अपने तरीके से भजो। जब अपने तरीके से दिल से भजोगे ना, तो राजा की भांति वो भी आपको उचित सम्मान देगा। नाटक करोगे, ड्रामा करोगे, दिखावा करोगे तो दंड ही तो पाओगे ना। तो अपने नाटकीय प्यार को अगर इस तरह से निभाओगे तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा ही मिलेगा। जब दंड मिलेगा ना, दोष ईश्वर को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मन के मुताबिक नहीं होता ना, तो टूट जाता है दिल, और जब दिल टूट जाता है फिर ईश्वर को दोष देते हुए पता क्या कहते हैं,

दोस्तों बोझान एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हों बोझान रोज़ पनीन पसंदीदा बात।

फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। मैं तुझको कैसे समझाऊं, तू प्यार की बातें क्या जाने, तू झांक रही माजी में, ना देख उसे, ना देख उसे, आ तुझको सुनाऊं मैं कहानी तेरी, तू अपना फसाना क्या जाने।

एक खामोश और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं। माना कि इस शब की खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है। पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो मेरी तन्हाइयों को चीर कर, और इस खाली शब के इन अंधेरों में मैं ढूंढता हूं चांद।

उस ओर तक जहां तुम मुझे तन्हा छोड़ गए थे। गर्चे ये सफर आज भी मुझे मेरे हर उस बीते लम्हे को भुलाने का हौसला देता, मगर तुम्हारी मासूम बेबस अदाओं का एहसास कैसे भुला पाऊंगा, जबकि हमारे रिश्ते अब पिंजरों में कैद हैं। फिर भी उन रिश्तों की खुशबू हमारे दरमियान इन फासलों को कम करने में हमेशा मदद करते आ रहे हैं।

क्यों न लड़खड़ाएं। इन अंधेरों में मैं तुम्हें संभाल लूं। दूर तक चले हम साथ साथ, उम्मीदों के चिराग रोशन करें, ताकि एक नई सुनहरी सुबह हमें अपनी बाहों में समेट ले। भूल जाए बीते मौसम की यादों को, जब तुम तन्हा थी और मैं भटकता मुसाफिर। क्यों न इस मौसम में याद करें ढलती शामों को, सुरमई उजालों को, रात की नरम मिजाजी को, तुम्हारी मासूम अदाओं को। इस सफर में फिर से साथ साथ लड़खड़ाएं।

तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को नजदीकियों में तब्दील करने की कोशिश करें। फिर से इस खामोश पानी में पत्थर फेंके ताकि इन लहरों का मिलन साहिलों से हो। आओ इन बादलों को अपनी मुट्ठी में कैद करें और फिर से पहले ही की तरह बारिश में भीग जाए। मैं तुम्हारी हथेली में अपना अक्स ढूंढ लूं ताकि अपनी बिखरी सूरत संवार सकूं। आओ हम दोनों आज ये अहद करें कि नहीं बिछड़ेंगे फिर से कभी, और तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को हमेशा हमेशा

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त रमेश

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

पेश है मिले जुले गीतों का ये खास कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। आदाब।

छूता हूँ, खुशबू को ढूंढता हूँ, पानी को पकड़ता हूँ, रूहों से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। टिमटिमाते सितारों की करवटों में शबनमी बूंदों की रंगोली से इंद्रधनुषी बंटवारे की लकीरें खींच लेता हूँ। आसमां से नजरें मिलाता हूँ, चांद को निहारता हूँ, सुनसान राहों को तन्हा रातों में तकता रहता हूँ। चांदनी रातों में अपने ही साए से लिपट जाता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, सच में मैं पागल हूँ। गुप अंधेरों में खुद के साथ सफर करता हूँ, भटके परिंदों की रहनुमाई करता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ।

मेरे ख्वाबों की ताबीर हो, इंद्रधनुषी मौसमी बारिश हो, जिंदगियों में बहारों की बौछार हो, समय को ठहरने की इजाजत हो, चाहतों में चुंबक जैसी जुम्बिश हो। सांसों की गर्माहट में होंठों की कपकपाहट हो, इन कदमों की आहटों में पुनर्जन्म का एहसास हो, आशियानों में लगी आग हो, टूटे आईनों में बिखरती तस्वीरें हो, लेकिन सिर्फ तुम मेरे ख्वाबों में हो, मेरे ख्वाबों की

मौसम बदलते रहे पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए। मोहब्बत अब बेजुबां है,

बहलाती है मन का आंचल, भर देती है खुशियों से दामन, अपने साथ कहीं दूर तक ले जाती है, गगन के उस पार अपनी मुस्कुराती दुनिया में, जहां फरिश्ते राहों में सजदा करते हैं, जहां यकायक फूलों की बारिश होती है, जहां चांद सितारे हमारे पांव छूने में गुरेज नहीं करते हैं, जहां रूह रक्स करती है और जिस्म प्यार का इजहार।

अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आदाब।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं अभिजीत शर्मा, प्रस्तुत करेंगे भरत सपोरी।

0: संगीत कहा गया है। वस्तुतः गीत शब्द में स जोड़कर संगीत शब्द बना, जिसका अर्थ है गान सहित नृत्य और वादन के साथ किया गया गान संगीत है। शास्त्रों में संगीत को साधना भी माना गया है। आज के कार्यक्रम इनसे मिलिए में मैं एक होनहार गायक बल्कि युवा गायक जो अंबाला की शान है, अपने परिवार की, स्कूल की, अंबाला कैंट की शान है, करते हैं स्वागत आज के मेहमान 14 वर्षीय अभिजीत शर्मा का स्टूडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ में।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज रेडियो वितस्ता हमारे अंबाला कैंट के FM पुराने में, और बहुत मजा आएगा आज।
0: अभिजीत, कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ है हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं, आप एक अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिए।
1: मेरा जन्म अंकल अंबाला कैंट में ही हुआ है, तो मेरा जन्म हुआ था 23 सितंबर 2008 को, एंड बस उसके बाद ऐसे ही चल रहा है, अच्छी जिंदगी है, पापा मम्मी सब एकदम। हमारा नया घर बना था तभी तभी, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। जब मेरा जन्म हुआ तो नई गाड़ी, नया घर, सब एकदम मतलब फ्रेशली आया मेरे लिए, नया पीस एकदम।
0: यानी कि आप घर के लिए एक नई सौगात लेके आए। आपके घर में और कौन कौन है?
1: मेरे घर में अंकल पापा हैं, मम्मा हैं एंड आकाश भैया हैं, वो कॉलेज में हैं।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आप संगीत और गायन की तरफ कब अट्रैक्ट हुए, क्या उम्र थी उस समय?
1: अंकल जब मैंने सबसे पहली बार अपना गाना गाया था तो मैं अपने टॉडलर्स में था, SD विद्या टॉडलर्स, तो मैं 4 साल का था तब मैंने अपना सबसे पहला गाना गाया था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कोई ऐसे शायद स्पेशल ओकेजन थी, शायद फादर्स डे होगा, तो उस दिन मैंने गाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे टीचर्स ने कहा तो ऐसे अट्रैक्शन बढ़ती गई।
0: क्या आप इस प्रोग्राम की शुरुआत उसी गाने से करेंगे जो आपने 4 साल की उम्र में गाया था?
1: जी अंकल जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसी गाने से शुरुआत करने में।
0: प्लीज।

मगर ये तो कोई ना जाने के मेरी मंजिल है कहाँ। पापा

0: अभिजीत, आप ये बताइए कि इस छोटी सी उम्र में जब आपने गाना गाना शुरू कर दिया, क्या समझ आया आपको संगीत और गायन के बारे में इस छोटी सी उम्र में? आपके माता-पिता ने इस हुनर को कैसे देखा?
1: अंकल, जब मैंने स्टार्ट करा था गाना तो मैं 7 साल का था। मतलब जब सीखना शुरू करा तो पता ऐसे लगा कि जो मेरे टॉडलर्स में जो म्यूज़िक टीचर थे, तो एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं जितने छोटे छोटे जब दोस्त होते थे, तो वो मुझे लेकर गए कि मैम इसका गाना सुनो। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने उन्हें शायद वो गाना सुनाया था, तुम ही हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने सुना तो वो बार बार मुझे बुलाते रहते थे कि आप तू गाना सुना मुझे वो वाला। तो मतलब लाइक उस टाइम मेरा वो सिग्नेचर सॉन्ग कहते थे, अभी भी मतलब बच्चों को याद है कि तू वो गाना सुनाता था। तो शिल्पा मैम थे, तो शिल्पा मैम ने फिर पापा मम्मा को कहा कि आप इसे ज़रूर सिखाइए। तो ऐसे पापा गाते हैं, भैया गाते हैं, सब गाते थे घर में तब। तो उसी टाइम फिर उन्होंने जब रीच आउट करा तो पापा मम्मा ने देखा कि हाँ ये गाता भी है। तो उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू करा धीरे धीरे। तो फिर ऐसे ही पता चल गया, टीचर्स ने मतलब सबसे पहले तो शिल्पा मैम ने बताया था कि आप इसे सिखाइए ज़रूर, ये कुछ ना कुछ कर सकता है आगे जाकर।
0: तो शिल्पा मैम को आप आज भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके इस संगीत के सफर में एक नींव रखी, मैं तो यही
1: जी
0: मानता हूँ। तो उनके लिए कुछ गुनगुनाइए और वही गाना जो आपसे बार बार सुनते थे।

0: जी शिल्पा मैम, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रही हैं तो ये अभिजीत ने आपके लिए ये डेडिकेट किया, क्योंकि टीचर जो हमारी होती है या हमारा होता है वही हमें सही रास्ता दिखा देता है या दिखा देती है। जैसे आपने, अभिजीत ने कहा कि इनके पेरेंट्स से बात की कि इनको आप संगीत सिखा दीजिए, और आपने बहुत बड़ा काम किया है जिससे आने वाले दिनों में हमारे देश को अभिजीत जैसा सिंगर मिलेगा। अभिजीत आगे चलते हैं, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आपको हमने कई बार अंबाला में स्टेज पर गाते देखा है, कैराओके पर भी, ऑर्केस्ट्रा के साथ भी। कैसे समन्वय इन दोनों में आप करते हैं?
1: अंकल, मैं अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ, एंड कैरियोके और जैसे म्यूजिक होता है लाइव म्यूजिक, तो कैरियोके का ये है, एक तो पूरा उसमें एक्यूरेसी अपनी एकदम बंद के चलना पड़ता है उससे। आप बिल्कुल खुला नहीं गा सकते, कोई आपको अगर अलग से अपनी हरकतें लेनी है, मुर्कियाँ लेनी है, तो आप वो नहीं कर सकते। एंड ऊपर से कैरियोके ठीक है एज अ प्रैक्टिस मटीरियल, मुझे बहुत पसंद है, पर लाइव म्यूजिक में ये है, अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे छोटे मोटे, वैसे तो ये गाने ही आजकल के, जैसे पुराने टाइम के रफ़ी जी के गाने हैं, तो उनमें तो चेंजेस करना बस क्या ही कर सकते हैं, वो तो पहले ही 5 महीने 4 महीने लग के पूरा स्कूल है एक गाना। पर जैसे कोई अलग गाना है और आप वो ऑर्केस्ट्रा में अगर आपने ज़रा सी भी मुर्की ली, तो एटलीस्ट उसमें म्यूज़िक का आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि अब तो म्यूजिशियंस हमारे अंबाला कैंट के एंड हर जगह के म्यूजिशियंस इतने एक्यूरेसी से बजाते हैं कि कैरियोके से कुछ कम नहीं है उसमें, पर बस ये है कि आप लाइव म्यूजिक में थोड़ा कहते हैं ना कि अपने आप को दिखा सकते हैं, जितना अगर जितने आपने सीख लिया है तो वो आप अपने लाइव म्यूजिक में दिखा सकते हैं। कैरियोके एज अ प्रैक्टिस मटीरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कैरियोके पे वैसे अगर हम देखा जाए तो मुझे लाइव म्यूजिक पर्सनली बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि एक फील एंड ऑरा ही अलग होता है लाइव म्यूजिक का, तो ऐसे ऐसे कोप हो जाता है साथ में।
0: मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये ख्याल आता है, आपने ये कहा कि लाइव म्यूजिक में आपको अगर अपने तरह की कोई चेंज लेनी है या कोई मुर्की लेनी है उसमें, तो क्या आप उस बैंड को पहले एडवांस में कहते हैं या वो इंस्टेंटली बैंड भी आपके गायन को समझ लेता है?
1: अंकल, मुर्कियाँ तो एक ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ ताल के साथ हम ले सकते हैं, तो वो तो ताल में हम ऐसे इंस्टेंटली ले सकते हैं। जैसे आपने कुछ थोड़ा ज़्यादा चेंज करना है, कभी कभी जैसे सिंगर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा कि मैंने अपना कुछ ये अलग से लाइन लगानी है या थोड़ा मुझे आलाप लेना है बीच में, तो वो हम उन्हें ऐसे प्रैक्टिस होती है रिहर्सल, तो उसमें बता सकते हैं कि मैं इधर आलाप लूँगा सर, तो ऐसे। जैसे एक बार मैं एक स्टेज पर गया था, तो मैंने अंतरे से गाना उठाना था, तो मैंने उन्हें पहले बता दिया कि सर मैं अंतरे से उठाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप अंतरे से उठाना, तो ऐसे होता है।
0: तो आप हमें कोई ऐसी कोई गाना या कोई अंतरा हमें सुना सकते हैं जिसमें आपने अपने तरीके से कोई चेंज किया या मुर्की लिया, कोई बदलाव किया?
1: जी जरूर सुना सकता हूँ।

0: संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
1: बहुत खूब अभिजीत, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस समय इस स्टूडियो में, अम्बाला कैंट के स्टूडियो में। हमारे अम्बाला कैंट की ही शान अभिजीत हैं, और अभी आपका जो संगीत का सफर है वो अभी शुरू ही हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुर और ताल को आप कैसे हमारे श्रोताओं को समझा सकते हो।
0: अंकल, सुर होता है जैसे एक, जैसे सारे का मापा है,
1: जी
0: तो उनमें ही अगर हम इंग्लिश में चलें तो सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, तो ऐसे ही पर्टिकुलर गानों के स्केल होते हैं। कोई गाना है जैसे जब कभी भी, तो ये सारे का मापा यहाँ से उठता है। तो अगर उसी गाने को हम थोड़ा किसी और सुर से उठा दें पर बज वो उस सुर पे रहे, तो उसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी को कि ये बेसुरा हो गया, तो उसे हम ये कहते हैं। सुर पे वो होता है कि हम जिस सुर पे वो बज रहा है, लाइक हारमोनियम के सारे का मापा, जिस टोन में वो बज रहा है उस, तो उसे सुर कहते हैं। एंड ताल तो एक पर्टिकुलर बीट होती है, जैसे हमारी तीन ताल है, जप ताल है, मत ताल, कहरवा, रूपक ताल, दीप चंदी ताल। तो जैसे ताल एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पर बहुत ही मजेदार चीज है। जैसे अब तीन ताल है, या चलिए कहरवा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये अभी मिड टोन पे बज रही है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धा दी दिन धा, ऐसे बज सकती है। एंड मतलब एक ही ताल पर वो है एक ही, बट वो तेज उसका दुगुन हो सकता है, चौगुन हो सकता है, या फिर वो आधी हो सकती है, अति विलंबित जैसे होता है, तो हम वो खुला गाते हैं। तो ताल इज जस्ट सम नंबर्स, उनकी एक पर्टिकुलर हमने बीट बना दी है। बोल होते हैं तबले के, जैसे धागे नाती नाके दीना, तो उनमें वो चलती रहती है, तो दैट इज ताल। एंड कंफ्यूजिंग कह सकते हैं शुरू में, जैसे कुछ ताले होती है, दीप चंदी, रूपक, 14 मात्रा है, 7 मात्रा है, मत ताल है, तो वो लगती है, पर एक बार अगर आपके मन में वो बैठ जाए तो उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस ताल में, अपनी आलाप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
1: जब आप सीखने जाते हो, जब आप पढ़ रहे हो होते हो ये,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: उस समय क्या आपका फोकस 100% उधर ही की तरफ होता है, तभी जाके हम इस चीज को समझ सकते हैं जैसे आपने अभी हमें समझाया ताल के बारे में?
0: हाँ जी, 100% फोकस। तो किसी भी चीज़ को करना है तो पूरा फोकस इस पे लगाना पड़ता है एक बार के लिए। एक बार समझ आ जाती है, उसके बाद आप आराम से चलती रहती है, वो धीरे जब सुनेंगे तो खुद आ जाएगी। शुरू में जब कोई नई चीज़ सीखनी होती है, जैसे रिसेंटली मैंने एक गाना सीखा मत ताल में, गुलाम अली जी का और कविता कृष्णमूर्ति जी की, वो गज़ल है, तो वो मत ताल में 9 मात्रा, तो उसे सीखने में काफ़ी मुझे टाइम लगा पूरा, लाइक मैंने दिन ही सुनता रहा सुनता रहा, बट एक बार जब समझ आती है तो उसके बाद धीरे धीरे हो जाता है।
1: तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, क्या उसकी एक झलक हो जाए?
0: हाँ जी, जरूर।

0: दे।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है अभिजीत शर्मा, जो एक सुप्रसिद्ध गायक बनने वाले हैं। आइए अभिजीत से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। आज हम उनसे उनके जिंदगी के बारे में सुनेंगे और साथ साथ में उनके कंठ से हम अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। अभिजीत, वैसे तो आपका बचपन ही अभी चल रहा है, ये बताइए बचपन में आपके पसंदीदा खिलौने क्या होते थे और क्या क्या शरारतें आप घर में करते थे?
2: बचपन में अंकल, एक तो आर्मी, जब से ये मैंने उरी वगैरह जितनी भी आर्मी की मूवीज हैं देखी, तब से मुझे बस एक भूत चढ़ गया था कि हाँ, मेरे को बस आर्मी ऑफिसर बनना है, कि बिल्कुल मुझे वैसा करेज करना है जैसे अंधेरा होना, तो मैंने अपनी गन लेके चल पड़ना कि मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूँ।
1: अच्छा।
2: तो ऐसे होता है, और गन्स एंड अवेंजर्स होते हैं जैसे, उनकी टॉय फिगर्स होती है, उनके साथ उन्हें सेट करके रख देना कि अब कल लड़ाई होगी, कल वॉर है। तो ऐसे ऐसे
1: जब हम किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, काबिल होते हैं, तो वो शरारतों में भी काबिल होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कम से कम एक शरारत तो बता दीजिए जो आपने बचपन में की होगी।
2: शरारतें अंकल, मेरी जो शरारतें होती थी एक्चुअली वो बहुत लॉजिकल शरारतें होती थी। जैसे मेरे आकाश भैया की चॉकलेट पड़ी है,
1: ठीक।
2: तो अब उन आकाश भैया का ये है कि जैसे कि अभी मैंने चॉकलेट रख दी, अब मैं इसे 3-4 दिन में आराम आराम से करके खाऊंगा।
1: ठीक है।
2: पर मुझे ये था कि कभी भी किसी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी तड़पाना नहीं चाहिए, तो मैं एक ही दिन में फिर उनकी सारी चॉकलेट खा जाता था।
1: और फिर कुछ नाराजगी झेलनी पड़ती थी?
2: नाराजगी नहीं, बस थोड़ा सा भागना पड़ता था।
1: चलिए, यही हम जानना चाह रहे थे, और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है,
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: जिसकी जिसके साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने यूनिफॉर्म की बात की, आपने आर्मी की बात की, आपने देश प्रेम की बात की। देश प्रेम को आप गा के हमारे श्रोताओं को कैसे बता सकते हैं?
2: जी जरूर
1: अंकल। और इसके बारे में आप कुछ डिटेल भी बता दीजिए, हमारे देश में देश प्रेम को जगाना कितना जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि जो आप गाना गाएंगे उससे भी हम लोगों तक वही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
2: देश प्रेम तो अंकल हर एक आदमी में वैसे आजकल है ही, क्योंकि सबको पता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आराम से अपने घरों में बैठे हैं, चल पा रहे हैं सड़कों पर, इधर स्कूल जा पा रहे हैं। अगर आर्मी ना होती तो फिर ऑब्वियसली ये सब बहुत मुश्किल होता, एंड देश काफ़ी अब कितना सुरक्षित फील करते हैं। आर्मी का तो एक बहुत बड़ा रोल है, और आर्मी तो सबके दिल में अब बसती है, क्योंकि हम हमें एक छोटी सी कील लग जाए तो हम बोलते हैं कि ओहो, आज काम नहीं हो पाएगा, आज लिख नहीं पाएंगे। वो वहाँ गोली खा कर भी कहते हैं कि नहीं, हम अभी भी लड़ेंगे देश के लिए,
1: देश के लिए।
2: तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और उनके लिए मैं एक गाना ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा,
1: प्लीज।
2: वतन पे जो फिदा होगा।
1: वाह,

कहो बहनों से दे भाई।

0: वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, ये बहुत साल पहले लिखा गया है और इसके साथ जुड़ा हुआ आज हमारे देश का जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सुरक्षित यहाँ पर तभी है जब हमारे सीमाओं पर प्रहरी उस पर नजर रखे हुए हैं और हम उनको यहाँ से अपना प्यार और स्नेह भेज रहे हैं और साथ में उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आगे चलते हैं, अभिजीत से बात करते हैं। अभिजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने गुरुजन को कैसे याद करते हैं, क्या कहना चाहोगे अपने गुरुजन को FM 90.0 MHz के माध्यम से, कौन सा गाना उनके लिए आप समर्पित करोगे? अभिजीत, मैं चाहूंगा कि आप विस्तार में अपने गुरुजन के बारे में बताएं।
1: अंकल, मेरे सभी गुरुजन बहुत सपोर्टिव रहे हैं एंड सभी ने जितना भी कुछ मुझे सिखाया है बहुत प्यार से सिखाया है, चाहे थोड़ी सी ही चीज़ हो, पर जैसे अक्विंदर मैम, शिल्पा मैम, मंजू मैम, राजकमल सर एंड मेरे गुरुजी श्री संतोष कटारिया जी, सभी ने मतलब इतना प्यार दिया है कि मतलब एक जैसा होता है ना कि हाँ जी गुरुजी हैं, एक स्ट्रिक्टनेस होती है, तो मेरे लिए तो मैं पता नहीं लकी कह सकते हैं, पर मेरे लिए सभी गुरुजन एकदम ऐसे लाइक फ्रेंड्स की तरह हैं एंड बहुत प्यार किया है एंड जब भी मैं कोई चीज़ सीखता हूँ तो मुझे सबकी याद आती है, सर की याद आती है कि सर ने ऐसे सिखाया वैसे सिखाया कि ये मैं अब गलत कर रहा हूँ। कोई गाना मैं रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डालता हूँ तो सबसे पहले वो सर से अप्रूव होता है, उसके बाद ही हो जाता है एंड जितने भी जैसे मेरे सर मुझे सिखाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ अब मेरे थोड़े ऐसा मुझे स्ट्रिक्टनेस है, मुझे वो है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे सर इज़ जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। एंड जैसे मैंने अपनी अभी पोर्टफोलियो बनाया तो उसमें भी मेरे गुरुजी का मैंने लिखा माय गुरुजी एंड माय बेस्ट फ्रेंड, तो उन सब के लिए मैं एक गाना एंड सर के लिए स्पेशली ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा।

0: मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि गुरुजन जितने भी अपना आशीर्वाद अपने शिष्यों को देते हैं उनसे ही वो शिष्य आगे की ओर बढ़ते हैं, और खुशनसीब है वो गुरुजन जिनको अभिजीत जैसे शिष्य मिलते हैं, और साथ में अगर वो इनके दोस्त भी हैं। हम संतोष कटारिया जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे देश के लिए एक ऐसे कलाकार को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में हमारा गौरव बनेगा।
1: तेरे जैसा यार कहां, ऐसा यार ना।
0: अभिजीत के साथ हमारी बातों का सिलसिला जारी है, और आज हमारी कोशिश है कि हम अभिजीत के गाने तो जरूर सुनेंगे ही, पर साथ में अभिजीत के जिंदगी के बारे में हम जानें। अभिजीत, आपके परिवार में आपके पापा भाई गाते देखे गए हैं सोशल मीडिया पर, क्या माँ भी गाती हैं?
2: जी हाँ, मम्मा भी गाते हैं।
0: क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए? उम्मीद है कि वो ये प्रोग्राम सुन रही हो।
2: अंकल, जैसा कि सभी जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया के जो पैदा होते ही जो सबसे पहले गुरु होते हैं और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं माँ बाप, और अपने भाई बहन ही होते हैं। आकाश भैया जैसे, वो भी ही इज जस्ट लाइक माई गुरु, एंड पापा मम्मा तो हैं ही। तो मम्मा से तो मतलब अगर मैं बोलने पे आऊँ फिर हमारा ये प्रोग्राम जो है ख़त्म ही नहीं हो पाएगा क्योंकि पापा मम्मा भैया इनके लिए जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी किसी भी बात पर जो भी होता है सपोर्ट सबसे ज़्यादा परिवार वाले करते हैं, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो पर परिवार वाले हमेशा आपके साथ होते हैं। मम्मा के लिए आज एक गाना ज़रूर गाना चाहूँगा, उसके बाद मैं पापा के लिए भी गाना चाहूँगा या फिर साथ में गा सकता हूँ, पर पहले मम्मा के लिए ज़रूर गाता हूँ।

0: मुझे जब माँ के लिए कुछ लिखना होता है तो मैं एक ही शब्द लिखता हूँ, माँ अनमोल। और सच में माँ अनमोल होती है। आगे चलते हैं, अभिजीत, आप का स्कूल का क्या योगदान है आपकी जिंदगी में, खास तौर पर एज ए स्टूडेंट, एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिंगर? क्या कहना है स्कूल के दोस्तों, टीचर्स और मेंटर्स के लिए?
1: स्कूल अंकल मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जितनी भी जैसे कोई प्रोग्राम है, छुट्टियाँ चाहिए होती है, लीव्स चाहिए होती है, तो स्कूल वाले तो आर दे आर लाइक बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ ज़रूर जाओ। एंड जैसे अभी यूनिट टेस्ट हुआ तो मेरा एक शो था एंड कानपुर था, तो स्कूल वाले मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। मैंने देखा है कुछ स्कूल जैसे करते सकते हैं कि नहीं हमारे यूनिट टेस्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास है, बट स्कूल वाले इतने कोऑपरेटिव हैं कि उन्होंने मेरा स्किप कराया एंड उसके बाद मेरा फिर से वापस दिलवा दिया। जितने भी टीचर्स हैं वो मतलब सब समझते हैं। जैसे मैंने मैम से पूछा कि मैम यूनिट टेस्ट का अब क्या करूँ मैं, मेरा तो फंक्शन है, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, तू जा एंड मैं तेरा यूनिट टेस्ट बाद में कराती हूँ। एंड प्रिंसिपल मैम स्पेशली, वो तो मतलब दिया इतना ज़्यादा सपोर्ट, तो मतलब कौन ही कर सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। स्कूल वाले तो बहुत प्यार करते हैं एंड दोस्त, तो दोस्त आपको पता ही है अंकल, सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो होते हैं।
0: क्या कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कभी खिंचाई भी करते हैं?
1: दोस्त अंकल खिंचाई मतलब किस वे में?
0: शरारत करना, और किस तरीके में शरारत करना, तंग करना, या कभी कहते हैं कि अभिषेक जरा साइड पे आ जाओ, हमें कोई गाना सुनाओ, क्या ऐसा होता है स्कूल में कभी?
1: स्कूल में तो नहीं अंकल, वैसे मैं गाना गाता रहता हूँ, यहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक है तो वहाँ पे सुन लेते हैं। स्कूल में उन्हें पता ही है गाएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बाकी दोस्त तो मेरे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा स्पेशली जो दोस्त है आर्यन आहूजा अभी लाइक वो बहुत अच्छा है, एंड शतिल है, आदित्य है, अनमोल, वो तो सारे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कोई गाना रिकॉर्ड करा कुछ नया तो मैं उन्हें भेजता हूँ कि कैसा लग रहा है, फिर वो बताते हैं। और एक है वो तो पूरा एकदम सुन के कि यार ये तेरे तो तूने गा तो दिया बट तेरे लेवल का नहीं है, तू और अच्छा गा, मतलब उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है पर वो फिर भी उसको पता है कि कैसा गाता है, तो दोस्त तो बहुत अच्छे
0: यानी
1: हैं।
0: कि दोस्तों में क्रिटिक होना बहुत जरूरी है, जो आपकी कमियां हैं या आपकी गलतियां हैं उनके बारे में बता देता है।
1: हाँ जी
0: दोस्त
1: हाँ जी
0: एक्चुअल में सही वही होता है जो हमारी कमियों के बारे में बता देता है, ताकि आप अगली जो कोशिश करेंगे कि वो एक्यूरेट करें।
1: जी बिल्कुल
0: अभिजीत, आपको 60 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है, क्या मायने रखता है आपके लिए एक अवार्ड?
1: अंकल, मेरे लिए एक अवार्ड इज जस्ट लाइक एक आशीर्वाद। जितने अवार्ड्स मिलते रहते हैं मैं कभी भी उन्हें एक लाइक ऐसे ट्रॉफी के वे में नहीं लेता, हमेशा उन्हें एक ऐसे वे में लेता हूँ कि ये मुझे मोटिवेट करते हैं उन्हें देख के कि मुझे और एंड और आगे बढ़ना है। जैसे इतने लोग प्यार से, इट इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ लव जैसे कहते ही हैं हम, कि हम आपको एक टोकन ऑफ लव देना चाहेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है, अवार्ड्स मिलते हैं एंड बहुत प्यार मिलता है, एज अ ब्लेसिंग काउंट करता हूँ मैं एक अवार्ड को।
0: बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि हर दिन हमें कुछ नया करना है, हर दिन हमें आशीर्वाद चाहिए, हर दिन हमें मोटिवेशन चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ आगे सीखना ज़रूरी है
1: जी
0: ताकि आप आगे की ओर बढ़ जाएं। अभिजीत, अंबाला कैंट का गौरव है आप। आप पहले रेडियो वितस्ता के फेसबुक लाइव शो में प्रस्तुति दे चुके हैं 3 साल पहले, अब उसके बाद आज आप अंबाला कैंट के पहले FM रेडियो स्टेशन पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है?
1: अंकल, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे अंबाला कैंट का एक ऐसे, हमारी अंबाला कैंट की एक पहचान और एक आवाज़ बन रही है रेडियो वितस्ता, एंड हम बहुत लोगों को अपने अंबाला कैंट के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और अंबाला कैंट की शान बढ़ाते हैं, उनकी हम आवाज़ दे सकते हैं, बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमारे साथ आज प्रोग्राम में अभिजीत शर्मा जी के पिताजी श्री राजीव शर्मा जी भी मौजूद है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद भारत जी, आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया, आपके आभारी रहेंगे।
0: कैसा महसूस होता है एक पिता को जब उनका सुपुत्र बहुत सारे एक समूहों पर अपनी प्रस्तुति देता है गायन के रूप में?
2: सबसे पहले तो आप जब अभिजीत के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पुत्र न कह के सुपुत्र कहा, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का। और वैसे भी ये बांके बिहारी जी वृंदावन से प्रसाद स्वरूप ही हमें मिला था, क्योंकि अपने बड़े भाई से ये 10 साल छोटा है, और जैसे एक आइडियल फैमिली होती है, वो सोचते हैं ठीक है यार, एक बच्चा है उसी को ठीक से परवरिश करेंगे, उसी के सपने पूरे करेंगे, बस फैमिली कंप्लीट है। क्योंकि मेरे बड़े भाई के यहाँ एक बेटा एक बेटी है, तो हमें लगता था कि चलो बेटी घर में है तो भाई हो गए। तो समहाउ इसके बड़े भाई को किसी दोस्त ने या किसी कजन ने कुछ ऐसा कहा कि यू आर ओनली चाइल्ड, और तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। ही इज वेरी सेंसिटिव।
0: यस
2: उसने ये बात दिल को लगा ली और उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो हमने, जैसे माँ अमूमन बच्चे को कह देती है, कह रहे नहीं कोई बात नहीं, वो तेरा भाई है, बहन है, विशु है, जयश्री, जो मेरे बड़े भाई के बच्चों के नाम है। पर उसने वो बात दिल में ऐसी लगा ली कि स्कूल में वो एक कोने में बैठ के रोता रहता था, पढ़ता नहीं था, और टीचर्स को लगा दिस इज ए केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस,
0: ओहो अच्छा
2: एंड दे कॉल्ड मी देयर। और मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ही इज वेरी पेम्पर्ड, और हमारे घर का माहौल तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा था, मेरे माता पिता जी होते थे, बहुत लाडला था बेटा। तो स्कूल इस मामले में बहुत जिम्मेवार है, मैं धन्यवाद कहूंगा स्कूल का। उन्होंने एक चाइल्ड काउंसलर को बुला लिया और उससे जब काउंसलिंग में बात निकली तो उसको ये चीज खा रही थी कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई भाई नहीं।
0: ओके
2: देन स्कूल एंड टीचर्स दे टोल्ड अस कि इफ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड प्लान फॉर अनदर बेबी।
0: ओके
2: और अभिजीत, व्हेन माय वाइफ इज इन फैमिली वे, तो मैं पहली बार वृंदावन जी गया था, तो वहां आकाश ने मुझे कॉल करके कहा कि पापा मेरे लिए आप वहां से क्या लाएंगे। तो मैंने कहा आप बताओ क्या चाहिए।
0: ठीक है
2: तो ही सेड के बांके बिहारी जी को ले आओ। तो ये सवाल इतना टेढ़ा था कि मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर में बांके बिहारी जी से पूछ के बताता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मैंने कभी इलॉजिकल आंसर नहीं दिया अपने बच्चे को, आज उसी का नतीजा है कि ये कहीं पहुंच रहे हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, ये संगीत में जा रहा है। तो मैंने उन्हें फिर दोबारा फोन मिला के बोला, मैं कहा बेटा बांके बिहारी जी कह रहे हैं अगर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा तो बाकी भक्त किसके दर्शन करेंगे। तो वो बांके बिहारी जी कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल बन के मैं आपके घर में जल्दी आ जाऊंगा। तब अभिजीत का जन्म।
0: बहुत अच्छी बात है, ये एक अवतार है, मैं तो यही कहूंगा। तो हमारी कोशिश ये हमेशा रहनी चाहिए कि हम आगे की ओर बढ़ें और उस प्रभु का धन्यवाद हमेशा के लिए करें।
2: जी, हम ये महसूस करते हैं कि ही इज बेसिकली सन ऑफ गॉड, वी आर जस्ट हिज केयर टेकर्स।
0: बहुत अच्छी बात है, और इससे ज्यादा खुशनसीब माता पिता क्या हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दें।
2: जी, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम राजीव शर्मा है, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश चंद शर्मा, और अभिजीत की हमारी फोर फादर्स में एक रिजेम्बलेंस और भी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक थे, वो मुनिमी, जो बेसिकली पहले टाइम के जो मुनीम हुआ करते थे, जो अगर आज का कैलकुलेटर भी आप लगाएं
0: हाँ
2: तो मुनीम उससे तेज कैलकुलेशन कर लेते थे, तो वो मुनीमी पढ़ाया करते थे। और उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था, उसके बावजूद भी आप ये लगाइए कि 100 किलोमीटर दूर तक उनका नाम चलता था। तो और कमाल की बात यह है, एक संयोग की बात है कि उनकी कद काठी बिल्कुल अभिजीत वैसा ही हो रहा है, उनकी हाइट मेरे पिताजी से हमसे ज्यादा थी। अब जब कभी मैं इसे देखता हूँ और जब मैं इसका नाम सुनता हूँ तो मुझे बार बार दादाजी श्री गीताराम शर्मा जी का ख्याल आता है कि शायद उन्हीं का स्वरूप दोबारा से हमारे परिवार में आ गया।
0: बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे सोचते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे खुशी का समा और कोई भी नहीं हो सकता है। आप आज अम्बाला कैंट के पहले एफएम स्टेशन पर है, जो कम्युनिटी रेडियो है, तो कैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि आज हम व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार मिले हैं।
2: जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने देखा है कि किस तरह से आपने ये सपना संजोया है और कितना आपने जी जान लगा के इसको यहाँ तक आप लेके आए हैं, और आपके एफर्ट्स में, आपके स्टूडियो में देखकर, और जिस तरीके से आप नए नए चेहरों को, नए लोगों को यहाँ ला के उनकी आवाज़ सब जगह पहुँचा रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय काम है, और मुझे खुद बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और ख़ास तौर से जब अभिजीत यहाँ आया है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मेरे लिए जो गर्व की बात यही है कि मुझे, मेरे सर्कल में बहुत रिजर्व्ड आदमी रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेरा सर्कल मैंने नहीं रखा, काम में इतना व्यस्त रहा क्योंकि अकेला काम करने वाला हूँ, तो बहुत से लोग मुझे अभिजीत फादर ही जानते हैं, और यहाँ भी आज मैं अभिजीत के पिता के रूप में आया हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा और ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी एक वाक्य हुआ कि मेरे बड़े पुराने मित्र, करीबन 15 साल पुराने मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि मैं अम्बाला से राजीव बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं पा रहा, तभी मैंने उन्हें बोला कि अभिजीत का फादर, और वो उन्होंने
0: वो
2: इमीडिएटली मुझे
0: एकदम
2: रिकग्नाइज कर लिया, तो मुझे लगा कि
0: माँ बाप के लिए
2: परवरिश तो ठीक जा रही है।
0: परवरिश ठीक जा रही है, माँ बाप के लिए इससे खुशी का समय क्या
2: जी
0: हो सकता है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं, और श्रोताओं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभिजीत के पिताजी राजीव जी भी गाते हैं, और हम अभी आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आप लोगों को दोनों की आवाज में एक ड्यूएट भी सुनाएंगे। बट उससे पहले मैं अभिजीत से जानना चाहता हूँ कि अभिजीत, आपने भुज में एक कंसर्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
1: अंकल, भुज का कॉन्सर्ट तो बहुत ही ज्यादा अलग था। मतलब जैसे कहीं मैं दूर जाता हूँ कॉन्सर्ट करने, तो थोड़ा सा एक फील आती है कि हाँ थोड़ा दूर है, अलग सा है सब। और वहाँ जाके तो एकदम ऐसे एकदम लगा कि हाँ सब अपने आप को जानने वाले हैं। मेरे वहाँ पे हर्षुख भाई सोनी दादू हैं, उन्हें मैंने अपना दादू बना लिया, इतना प्यार दिया उन्होंने। तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं, रोज ही मिलते रहते हैं, तो इतना प्यार दिया। एंड जितने भी लोग थे, मतलब उनके जो चेहरे पे जो स्माइल थी, वो ऐसा पता चल रहा था कि वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड मतलब बहुत अच्छा लगा भुज का कॉन्सर्ट, तो फिर से मतलब बहुत प्यारा था।
0: कोई गाना आपको याद आ रहा है कि जो आपने वहां गाया हो और हम भी और हमारे श्रोता भी उसका कुछ हिस्सा सुन पाए?
1: जी अंकल, मैंने वहां पर वैसे तो 7 गाने गाए थे, पर उसमें से एक था जी, अभी वैसे तो दोपहर का समय है, बट फिर भी मैं गा देता हूँ।

पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया एक।

0: जी हाँ, हमारे साथ है राजीव शर्मा जी और अभिजीत शर्मा जी, और साथ में मैं सर आप दोनों से एक अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी श्रोता है, आप दोनों की आवाज में कोई सा भी आपका मनपसंद ड्यूएट या गीत आप सुनाए, ताकि जो सुर और ताल की जो लय है वो जिंदगी में भी बनी रहे और संगीत में भी बनी रहे।
1: जी जरूर, एक गीत है जो मैं अपने दोनों बेटों के साथ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और वो दोस्ती की थीम पे ये गीत है जो हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पे भी किसी ने डाल दिया था तो मैं वही चाहूंगा सब श्रोता सुने। और एक अपील भी करूंगा कि पिता को अपने पुत्र के साथ हमेशा मित्रता पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए, अगर आप उससे उसका 100% निकालना चाहते हैं। पुत्र जब कामयाब होता है ना, तो अखबार, सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी सब उसको प्रमोट करते हैं
0: जी।
1: लेकिन अगर पुत्र कभी नाकामयाब हो जाए तो उसके पिता को खड़ा रहना चाहिए उसके सहारे में, ताकि वो टूटे नहीं
0: जी,
1: और अपने आप को फिर से समेट के दुगनी ताकत के साथ अपने श्रेय, अपने क्षेत्र में जो भी वो करना चाहता है उसे कर पाए।
0: बहुत अच्छी बात।
1: दोस्ती का ही ये गीत मैं आपको सुनाऊंगा।
2: ये

0: ये जिंदगी हम सब की ऐसी ही चलती रहनी चाहिए, जिंदगी का कारवां ऐसे ही चलते रहना चाहिए। खुशी राजी हम आगे की ओर बढ़ें और हम भी इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार का अच्छे।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: महके तो
1: भवरा। करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर विपिन सूदन के साथ की गई बातचीत सुने। आपकी बातचीत का विषय है हार्ट अटैक कारण और उपचार।
2: डॉक्टर सूदन, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में।
3: जी,
2: पहले ये हमें बताइए कि दिल की कितनी अहमियत है हमारे शरीर के लिए।
3: ऐसा है, दिल हमारे शरीर का एक अहम अंग है और ये इसलिए है क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को साफ खून सप्लाई करता है।
2: जी,
3: हमारा जो मानव दिल होता है उसको 4 खानों में बांटा गया है, जो 2 ऊपर के खाने होते हैं, 2 नीचे के खाने होते हैं, लेकिन इनका आपस में जो कनेक्शन है वो राइट और लेफ्ट साइड से होता है। तो जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसमें जितना भी खून आता है, फेफड़ों से साफ खून आता है, वो ऊपर वाले हिस्से में आता है जिसे हम लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। तो वहाँ से फिर वो साफ खून नीचे वाले हिस्से में जाता है जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं।
2: जी,
3: वहाँ से खून हमारे एक बड़ी नाड़ी होती है जिसे एओर्टा कहते हैं, उससे पूरे शरीर में वो पहुँचाया जाता है। फिर पूरे शरीर से जो गंदा खून होता है वो वापस आता है और हमारे शरीर के जो दिल का जो राइट साइड आता है, ऊपर का हिस्सा होता है राइट ऑरिकल, उसमें वो इकट्ठा होता है।
2: डॉक्टर साहब, इस हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने जो मौजू चुना है वो है हार्ट अटैक।
3: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
2: हार्ट अटैक क्या होता है?
3: ऐसे है कि हमारे हर एक अंग को, शरीर के अंग को खून चाहिए होता है, क्योंकि उसमें जो उनके एक जो हम सेल लेते हैं जो कि एक मुख्य उसका हिस्सा है जिसमें कि पूरी एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिज्म सारा चलता है, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज है या दूसरी वस्तुएं हैं उनको जलाकर, उनको मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो ऑक्सीजन जो है वो हमें खून से ही मिलेगी।
2: जी,
3: तो ये खून जो है ये हमारे जो दिल है वो सब जगह पे पहुंचाता है, इसलिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब कुछ हिस्से होते हैं इनके साथ ही साथ बाकी शरीर के हिस्सों के अतिरिक्त जो दिल है उसे अपने लिए भी खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे भी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये खून का दौरा कम हो जाता है तो हम कहते हैं दिल का दर्द हो जाता है। लोगों को जब दिल का दर्द होता है तो उसमें खून की कमी होती है, लेकिन जब वो खून का दौरा बंद हो जाए किसी हिस्से में तो वो बिल्कुल ही उस हिस्से में जो खून है नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो हिस्सा मरने जैसा हो जाता है, उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं।
2: जी,
3: तो अब ऐसा है कि ये हार्ट अटैक हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ जो नाड़ियां हैं जो कि शरीर को खून पहुंचाती हैं उनमें अगर कोई खराबी उत्पन्न हो जो कि जन्म से ही हो, उनमें भी हो सकता है कि वो हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन ये बहुत रेयर होता है।
2: डॉक्टर सूदन, हमने एक बात सुनी है कि दिल में छेद है।
3: हाँ जी,
2: ये अक्सर सुना जाता है।
3: हाँ जी,
2: तो क्या बताएंगे आप इस बारे में?
3: ऐसा होता है कि जो हमारे दिल की जो 4 खाने जो होते हैं उनमें ऊपर वाला और नीचे वाला जो खाने होते हैं जैसे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके बीच में एक दीवार होती है जो कि जन्म के साथ साथ वो बनती है। पहले वो एक ही खाना होता है, उसके 2 बनते हैं, नीचे भी एक ही होता है, उसके 2 बनते हैं। तो जब उनमें पूरा वो डेवलपमेंट वॉल का नहीं होता है तो उसमें वो छेद रह जाते हैं, जिसके कारण स्थिति काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि जो खून का दौरा है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो है ऊपर वाले हिस्से से नीचे में जाएगा राइट साइड पे, और फिर वो लंग्स में जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों से निकल के वो लेफ्ट साइड पे आएगा, और लेफ्ट साइड के नीचे वाले वेंट्रिकल से निकल के वो शरीर में जाएगा बाकी हिस्सों में। लेकिन जब ये छेद होता है तो प्रेशर चेंजेस

0: कुछ फैट्स होते हैं, कुछ अंदर से इंजरी हो जाती है, वेस्कुलर इंजरी कहते हैं, उसके कारण अंदर कुछ चीज़ें जमा हो जाती हैं जो कि हमारी जो वॉल्स होती हैं अंदर के वेसल्स की वॉल्स होती हैं उनको वो छोटा कर देती हैं, नैरो कर देती हैं, जिसके कारण जो खून का बहाव होता है वो कम हो जाता है।
1: यानी हम ये मान के चलें कि किसी भी उम्र में हार्ट अटैक हो सकते हैं।
0: हाँ जी हाँ, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बचपन में या बच्चों में ये कम होता है, और उसमें ये कारण नहीं होता है, उसमें कारण होता है कि उसमें नाड़ियों में कोई एनोमली हो, उनका एनोमलस ओरिजिन होता है, वो गलत तरीके से बनी होती हैं, उनमें हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है।
1: अच्छा, दिल में और किस तरह की बीमारी होती है?
0: दिल में अब जैसे हम कहते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज होती हैं, जिनको कि हम कहते हैं जन्म से वो बीमारियां होती हैं,
1: जी
0: उनमें जैसे एक हमने बताया अभी कि छेद हो सकते हैं, उसमें एक होता है कि जिसमें जो उनकी जो नाड़ियां उत्पन्न होती हैं, जैसे लेफ्ट साइड से निकलने वाली हैं वो राइट साइड से भी निकल जाएं, जहाँ आधी लेफ्ट से हो आधी राइट से हो वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें खून की मिक्सिंग हो जाती है, फ्रेश और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, वो गंदा खून और साफ खून मिल जाते हैं,
1: जी
0: इसलिए पूरा जो साफ खून शरीर को नहीं मिलता है वो भी बीमारी हो जाती है। कई बार स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है कि जो खाने बनने होते हैं तीन बन जाते हैं, उनके दो का पूरा वो विभाजन नहीं हुआ होता है, तो इस तरीके से वो बीमारियाँ बन जाती हैं अलग अलग, इनको हम कंजेंटल हार्ट डिजीजेज में लाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये धड़कनें जो होती हैं दिल की, ये एक जैसी होती हैं हर इंसान में?
0: ऐसा है कि जो ये धड़कन होती है ये हमारे जो हार्ट का जो राइट साइड का ऊपर वाला हिस्सा होता है, राइट ऑरिकल जिसे हम कहते हैं, ये उसमें उत्पन्न होती है, वो एक पॉइंट होता है वहाँ पे जिसे हम एस ए नोड कहते हैं, वहाँ से उत्पन्न होकर ये पूरे हार्ट में फैल जाती है, और इसका एकदम से फैलती है, और इसलिए जो धड़कन है वो बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन उसका जो रेट होता है वो वेरी कर सकता है,
1: जी,
0: वो अलग अलग हो सकता है।
1: यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अलग अलग हो
0: हाँ
1: सकता
0: जी
1: है।
0: रेट वेरी कर सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम आपकी बातचीत जारी रखेंगे। एक आपकी पसंद का, चूंकि दिल की बात हो रही है तो जाहिर
0: हाँ जी,
1: है।
0: अब सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि धड़कन जो दिल की धड़कन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब तक दिल धड़कता रहता है तो उसके साथ ही हमारी ज़िंदगी भी चलती रहती है, तो मेरी पसंद का एक
1: यानी
0: गाना है
1: धड़कन
0: जो
1: फिल्म से?
0: धड़कन फिल्म
1: जी
0: से
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही कहा आपने।

0: डॉक्टर विपिन सूदन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक क्यों होता है, इस पर हम बात करेंगे।
1: ऐसा है कि जैसे अभी हमने ये जाना है कि जो हार्ट है उसको भी अपने लिए खून चाहिए होता है, तो कुछ कारणों से जब वो ब्लड की सप्लाई जो हार्ट को कम हो जाती है तो उस समय हम कहते हैं दिल का दर्द हो रहा है, एंजाइना होता है। लेकिन ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो नाड़ियां हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनमें एकदम से ही वो खून का दौरा बंद हो जाए, जैसे कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन अंदर हो जाती है, तो वो एकदम से नाड़ियों को बंद कर देता है और उसके आगे वाला जो हिस्सा होता है उसमें खून का बहाव जो होता है वो बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो हार्ट का हिस्सा है जिसको खून नहीं मिलता है वो एक किस्म से मर जाता है,
0: यानी नाड़ियों के जरिए जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो पहुंचता नहीं,
1: वो पहुंचता नहीं उसमें। ब्लड में ऐसा है कि जिसमें काफ़ी कारण हैं, जैसे कि हम कहते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि सिगरेट पीने से काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं। हमारे शरीर में कुछ लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो फैट्स जो होते हैं ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे उसमें HDL जो होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये एंटी रिस्क फैक्टर होता है जो कि हार्ट अटैक से बचाएगा
0: जी।
1: लेकिन इसके दूसरे हिस्से में देखें तो LDL आता है जो कि खराब फैट होता है, ये बढ़ जाता है स्मोकिंग से, HDL कम हो जाता है। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि स्मोकिंग बंद करनी चाहिए क्योंकि इसका सीधा रिश्ता जो है फैट के साथ होता है
0: जी।
1: तो एक तो ये है कि वो उसके कारण जो फैट बढ़ जाता है वो जमा हो जाएगा नाड़ियों के अंदर, उसके कारण वो जो जमा होने के बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, वेस्कुलर इंजरी हो जाएगी, तो वो आगे खून का बहाव बंद कर देते हैं। दूसरी जो एक बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, और जो लोग की सेडेंट्री रहते, काम ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका भी जो है उनमें चांसेस इसके बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। तो जब खून का दौरा बंद हो जाएगा तो वो खून आगे नहीं जाएगा तो वो टिश्यू जो होता है वो डेड हो जाता है।
0: ये भी हम अक्सर सुनते हैं कि पहला स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज हार्ट,
1: उसमें यही बात है कि जैसे हम पहले देखते हैं तो हमें लगता है कि किसी का जब खून का भाव थोड़ा कम हो जाता है तो उसमें जब वो ज़्यादा काम करता है व्यक्ति तो उसमें उसकी डिमांड और सप्लाई जो होती है खून की उसमें अंतर आ जाता है, डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, तो पहले स्थिति में तो उनको सिर्फ पेन ही होगा, दर्द ही होगा, तो जिसे हम कहते हैं कि दिल का दर्द हो रहा है इन्हें, तो उसमें ही अगर स्थिति में अगर व्यक्ति सलाह लेने के लिए पहुंच जाए तो जब उनकी हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, दिल का रील लेते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है, तो हम उनको दवाइयों पे डाल देते हैं, उनको खाने के लिए और प्रिकॉशंस हम उनको बताते हैं कि क्या क्या उनको करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, बाकी बीमारियों के लिए टेस्ट करते हैं ताकि हम देखें कोई और ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके कारण ये हार्ट अटैक या खून का दौरा कम होने के चांसेस हैं।
0: डॉक्टर साहब, क्या क्या होता है जब हार्ट अटैक के चांसेस होने लगते हैं, एक इंसान को किस तरह क्या महसूस करता है वो?
1: उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो जो दर्द है जो कि दिल का दौरा होने पे एक व्यक्ति को महसूस होता है वो जिंदगी भर उसको याद रखता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और उसके साथ ही साथ ये देखा गया है कि उस व्यक्ति को पसीना आ जाता है और उसके साथ ही
0: दर्द कहाँ से शुरू होती है?
1: ये हमारा जो दिल है वो हमारे लेफ्ट साइड पे और हमारे स्टर्नम के थोड़ा नीचे और लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए दर्द ज़्यादातर वहीं पे महसूस किया जाता है। और ये जो दिल का दर्द होता है ये हमारे लेफ्ट आर्म में भी जा सकता है, नेक में जा सकता है, बैक पे भी जा सकता है, तो ये व्यक्ति जो महसूस करता है दर्द होता है, साथ में उसको पसीना काफ़ी आता है, प्रोफ्यूस स्वेटिंग हो जाती है, और अगर जिस हिस्से में उसका हार्ट का जो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है खून का कम होना, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाती हैं जो कि हमें हार्ट अटैक में भी नज़र आ सकती हैं, कि अगर वो इन्फीरियर वॉल उसमें इन्वॉल्व है हार्ट की तो उस स्थिति में हो सकता है कि ब्लड प्रेशर कम भी हो जाए और साथ में उसकी धड़कन जो है उसके ऊपर भी असर हो सकता है क्योंकि वो जो कंडक्शन होती है वो भी अफेक्ट हो जाती है उसमें।
0: इस शख्स को क्या करना चाहिए इमीडिएटली
1: ऐसे स्थिति में?
0: फर्स्ट एड की बात,
1: फर्स्ट एड के लिए तो सबसे पहले ये है कि वो जो भी काम कर रहा है उसको छोड़ देना चाहिए, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसका ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको तुरंत एक तो आराम करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में एकदम से उसको हॉस्पिटल में लाना है और उसको ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, उसको एकदम से IV लाइन लगाना है ताकि उसके ज़रिए हम इंजेक्शन लगा सकते हैं इमिडिएटली, उसको हमने देखना है कि मुँह के अंदर कोई थूक वगैरह या कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, वो साफ़ करके उसको तो उसके बाद फिर हमने उपचार शुरू करना है, उनका ब्लड प्रेशर लेना है, उसका ECG लेना है। ECG में हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का हार्ट अटैक हुआ है, और अकॉर्डिंगली हमें उनको जो है ड्रग्स और मेडिसिंस वो देनी है।
0: डॉक्टर सूदन, ये बताइए, महिलाओं में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं या पुरुषों में? इस तरह की कोई रिसर्च हुई है क्या?
1: ऐसे है कि हमारे जो स्ट्रेस सहने की जो शक्ति है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है, तो हमारे जो मेल्स हैं उनमें स्ट्रेस कम, वो इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं करते हैं।
0: यानी
1: और दूसरा
0: आप
1: ये
0: कह
1: भी
0: रहे हैं
1: देख,
0: कि स्ट्रेस का मेन कारण
1: स्ट्रेस भी,
0: होता
1: हाँ जी, स्ट्रेस हो, गुस्सा आना, इससे भी जो हार्ट अटैक जल्दी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी इसके लिए, उनको चीज़ें चल रही हैं ऐसी कि जिनके कारण उनके शरीर में वो बन रही है स्थिति कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो गुस्से की स्थिति में और जब उनको ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, ऐसी स्थिति में एक तो उनका जो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है उनके हार्ट की, तो ऐसी स्थिति में भी चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम अपनी बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। आपकी पसंद का कोई गाना हो जो
1: मेरी
0: आप सुनना
1: पसंद
0: चाहें,
1: का, हाँ जी, एक गाना
0: हम भी
1: है
0: सुनना
1: मुकद्दर का
0: चाहेंगे।
1: सिकंदर,
0: जी,
1: लता जी की आवाज़ में।
0: मुकद्दर का सिकंदर, दिल से रिलेटेड गाना है।
1: हाँ जी, ये दिल से
0: जी
1: रिलेटेड गाना है।

0: डॉक्टर सूदन ने ये बताइए, एक तो हार्ट अटैक और दूसरा हार्ट फेलियर, इनमें हाँ किस तरह का अंतर है?
1: ऐसे है कि जैसे हमने देखा है, जो हार्ट फेलियर हम कहते हैं कि कुछ कारणों से हमारा जो दिल है वो अपने काम करने की क्षमता से अधिक काम करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं सकता है। जैसे हमने अभी बताया था कि अगर खून का कम हो जाना, उसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन खून जो होता है उसमें जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो जो हमारा दिल है वो ज़्यादा तेज़ खून को पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि वो उतनी ही ज़रूरत जो हमारे शरीर की है उसको पूरा कर सके। तो इस स्थिति में उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पूरा काम ना कर सके और खून का जो है कमी को हम ठीक ना कर सकें, तो एक ऐसी स्टेज भी आ जाती है जिसमें कि जो दिल है वो अपनी क्षमता पूरी क्षमता से काम करने के बावजूद भी जब पूरा ये शरीर की सप्लाई नहीं दे सकता है तो उसमें हम कहते हैं कि वो उसके फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसमें कि प्रेशर चेंजेस आते हैं।
0: यहाँ पर डेथ भी हो सकती है।
1: हाँ जी, उसमें प्रेशर चेंजेस आती हैं कि जो पीछे की तरफ पूरा बैक प्रेशर चेंजेस हम उनको कहते हैं कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उससे हमारा राइट जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें चेंजेस आएंगी, उससे वो सीधे लंग्स पे ऊपर पड़ेंगी, उससे पूरे शरीर के ऊपर पीछे चेंजेस जाएंगी, हमारा जिगर भी बढ़ जाएगा, सांस बढ़ जाएगा, पैरों में सोजिश आ जाएगी। ऐसी स्थिति में हम उनको कहते हैं कि इनको फेलियर हो गया है। कुछ और बीमारियाँ भी हैं जिनके कारण फेलियर हो सकता है, तो उन बीमारियों में भी जब हम देखते हैं कि उनका उपचार करते हैं तो फेलियर जो है वो ठीक हो सकता है। लेकिन जो इस तरफ हम कहते हैं कि हार्ट अटैक, ये इसमें हम कहते हैं कि ये खून की कमी के कारण ही जो खून का बहाव जो बंद हो जाता है। ऐसे है कि अगर हम पहले से प्रिकॉशंस लेते हैं, हम लोग ये देखें कि अपना अगर कभी भी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे हमें किसी को हाइपरटेंशन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना चाहिए कि उनको हाइपरटेंशन का इलाज होता जाए, ठीक इलाज हो जाए। स्मोकिंग अगर आदमी बंद कर देता है तो उससे भी बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमारा दिल जो है उसमें जो रक्त का जो बहाव है उसमें कई बार जब वो भारीपन आ जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, उसमें भी चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। तो हम खून को पतला करने की दवाइयाँ देते हैं ताकि वो ज़्यादा बढ़े नहीं, उसका जो गाढ़ापन है वो कम हो जाए। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो हम उनको शुगर का इलाज साथ में ही कर दें। और हम ये देखें कि अगर कोई आदमी उसकी जो है वो बैठने का काम ज़्यादा है, उसको जो वो एक्सरसाइज नहीं करता है, अगर वो थोड़ी एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दे तो इन चीज़ों से हमें काफ़ी वो प्रिकॉशन से हमें काफ़ी फायदा होता है,
0: से बच सकते हैं।
1: हाँ जी, और इसके साथ ही साथ हमें हमारे जो है डे टू डे लाइफ है उसमें हम टेंशन को ईज आउट करने के जो तरीके हैं, मेडिटेशन है या कुछ ऐसे जो तरीके अपनाएं कि जिनसे हमारी स्ट्रेस कम हो जाए, हमारी टेंशन कम हो जाए।
0: योगा तो योगा का कितना सपोर्ट रहता है आज?
1: हाँ जी, ऐसे है कि आप योगा की कुछ एक्सरसाइजेज जो होती हैं, एक तो वो स्लो एक्सरसाइजेज हैं और उनमें ऑक्सीजन का बहाव वो तेज होता है, तो वो हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचाएंगी। हाँ जी
0: डॉक्टर साहब, और क्या करना चाहिए कि हार्ट अटैक ना हो?
1: अब इन सब स्थितियों के साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें आप एक हम जो खाना खाते हैं वो अच्छा साफ सुथरा खाना खाएं, जिसमें हमारे संतुलित आहार होना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा फैट्स ना हो, क्योंकि फैट्स जैसे ही हमारे शरीर से कम होते हैं हमारे चांसेस जो होते हैं हार्ट अटैक के वो कम होते जाते हैं। तो अगर वो ज़्यादा भी हो गए हों तो उनका टेस्ट करवा के अगर हम देखते हैं कि ये ज़्यादा है, फैट्स ज़्यादा हो गए हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं हम लोगों का, वो करवाने से हमें पता चल जाता है कि ये ज़्यादा है तो हम दवाइयाँ देते हैं जिनसे वो कम हो जाते हैं। तो उनसे भी हमें जब वो कम हो जाते हैं तो क्योंकि जो फैट्स होते हैं ये अब जो डिपॉजिट हो जाएंगे वेसल्स के अंदर तो ये खराबी उत्पन्न करते हैं, तो इनसे भी हमें फायदा होता है जब हम इनको कम करते हैं।
0: डॉक्टर सूदन, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपनी पसंद बताइए हमें।
1: मेरी पसंद का एक गाना है टावर हाउस का, लता मंगेशकर जी की आवाज से।
0: डॉक्टर सूदन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विपिन सूदन के साथ की गई बातचीत। आपकी बातचीत का विषय था हार्ट अटैक कारण और उपचार। आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: होगा उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: अब अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अम्बाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
1: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल

जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अम्बाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गाँव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
1: नहीं, कभी नहीं।
0: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें एक लाख तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
1: अयो नोको नोको नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
0: राम यहां। कुछ पियोगे?
1: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
0: नहीं, सोमरस।
1: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे अरे, दारू की बात कर रही थी। किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की या स्कॉचिस की?
0: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
1: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली। जल्दी पिलाओ महाराज।

0: numeral का कलर तो कोको कोला के जैसा है। महाराज
1: बोलो।
0: एक बात याद आ गई महाराज मेरे।
1: पूछो।
0: वो हमारे नीचे ये पीने के लिए कहीं परमिट है कहीं परमिट नहीं है, यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
1: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं, ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो।
0: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज।
1: बोलो।
0: इधर आओ। मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
1: हूँ। अच्छा।
0: एक पोटी थी।
1: पोटी?
0: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी।
1: अच्छा।
0: उसका नाम था चुनिया।
1: सुनिया?
0: हाँ। आजकल के जमाने की वो छोकरी थी, उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई। अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा।
1: शाबाश, तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ
2: चुनिया। अरे किधर है रे तू?

আজি ঘাসলে ডাল খুব ডালো না নিজে মাছ কান্দি লোক আপনি হা।

0: ही दालच महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2 कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैना वारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 7056413010 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मावनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर प्रोग्राम सरगम में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा सफर फिल्मों की दुनिया से। ये है संगीत का सफर जो आपके दिल को छू जाएगा, वो हसीन लम्हे जो हमेशा याद रहेंगे। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया गीत। संगीत खयाम का है, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

का हर एक पल सुंदर है, कल क्या हो किसको ये खबर है, लंबा सफर

अभी आप सब सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया था शिव हरि ने और बोल लिखे थे हसन कमल ने। लीजिए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है सच्चाई और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

प्रोग्राम का अगला नगमा आप सबकी नजर फिल्म दूसरा आदमी से। म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे स्वर दिए हैं किशोर और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है कल्याण जी आनंद जी का संगीत दिया हुआ गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेलाल और जिसे लिखा है राजेंद्र किशन ने।

0: प्रोग्राम के अगली पेशकश एक महल हो सपनों का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गाने को संगीत से सजाया है रवि ने और इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।
1: एक महल हो

आनंद बख्शी का लिखा सुंदर गाना मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अजनबी से, जिसे म्यूजिक दिया है R.D. बर्मन ने।

0: ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात।
1: ऐसा ना हो तो कभी छोड़ दे मेरा साथ।
0: और फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात।
1: Yeah.

अब पेश है लावारिस फिल्म का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने, म्यूजिक दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने, और इस गाने को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 3, जो आधारित था पुराने फिल्मी गीतों पर। पेश किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
3: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
4: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
5: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
4: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
5: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
4: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

मेरे शब्दों में तुम्हारे नाम की दीवानगी हमेशा महफूज रहती, जो तुम मेरी ढलती उम्र को अपनी पनाह में लेते, मेरे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेते और मेरी दर्द को अपना दर्द समझते, मेरी परेशानी में मेरे हम कदम साथ साथ चलते, मेरे सफर के आखिरी पड़ाव तक जहां से हमारे तुम्हारे बीच पनपे एक नए रिश्ते की पहचान होती।

तेरी हुस्न की, तेरी पाकिजगी की, तेरी रिश्तों की, तेरी मासूमियत की। कोई बात चले तुम्हारे ख्वाबों की, तुम्हारी इबादत की, वो बारिशों में भीगने की, वो तपती दिल मिलाती धूप में बेपनाह इंतजार की। कोई बात चले ढलती शामों की, सुरमई रातों की, गुप अंधेरों की, तेज रोशनी की। कोई बात चले मंदिरों में पूजा की, मसाजिद में अजान की। कोई बात चले वादियों में खामोशी की, तनहा पत्थरों की, परिंदों की, इन घटाओं की, फिजाओं की, भटकी रूहों की। कोई बात चले हम दोनों की

ये वो खूबसूरती है जिसे महसूस किया जा सकता है, तज़किरा नहीं। इन नीले आसमानों पर ये बादल के टुकड़े तैर कर तुम्हारे आंचल में पनाह लेते हैं, इसका एहसास है हमें। पर क्या तुम्हारे आंगन के किसी कोने में धूप जन्म लेती है कि नहीं? नहीं, शायद नहीं। इसीलिए इस घर के दर दीवार हमेशा पिघलते रहते हैं और टूटी छत से पानी की कुछ बूंदें जा गिरती हैं तुम्हारी मुस्कुराती तस्वीर पर, जो बरसों से इन तनहा खामोश पत्थरों को अपने हुस्न जमाल से रौनक बख्शती आ रही है।

चलन है, मेरी रास्ते की हर रह गुजर क्या इतनी कठिन है। मांगी थी रोशनी पर अंधेरों ने दामन थाम लिया है। चाहा था फूल खिले मेरे आंगन में, पर कांटों से दोस्ती हो गई। कई बार इस तरह के सिलसिले जारी रहे और हम उफ तक न कर सके। शायद मेरा वादा था जिंदगी से जो निभाता आ रहा हूं मैं जन्मों जन्मों से, एक उम्मीद के साथ कि तेरा मेरा मिलन होगा।

0: देखी है हमने मौसम पतझड़, बिन मौसम बहार। क्यों एक आरज़ू हर पहर याद दिलाती है मुझे तुम्हारी यादों के मौसम, जब चांदनी रातों में साथ साथ मिला करते थे। क्यों मैं तुम्हारे एहसास को अक्सर अपनी तन्हाइयों में महसूस करता आया हूं। क्यों तुम मेरे ख्यालों में धुंधली तस्वीर बनकर उतर जाती हो। क्यों मैं अपने घर की दीवारों पर तुम्हें सजाता हूं अपनी वीरानी को आबाद करने के लिए।
1: जहां से मैं बेताबियां लेके आया।
0: ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।
2: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक लगातार रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, चाहूंगी आपसे आज्ञा। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।